0: সাক্ষাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, জনপ্রতিনিধিরা, কর্পোরেটর হতে পারেন।
1: और मध्य भारत के हिस्सों में रोका
2: बे दिवस में दक्षिण गुजरात में पहुंची सके छे।
3: दिन में निकट परिदायित्व रखते हैं।

0: जनता धर्म की ओर करवट बदली है, करवट अभी खड़ी हुई नहीं, खड़ी तो उसी दिन होगी 30 अक्टूबर को, उस नए इतिहास के निर्माण करने में बम्बई से ज्यादा धर्म प्रेमी आए, एक नया इतिहास रखे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का नव निर्माण।
1: आई अपील यू, राम ज्योति विल गिव यू ऑल द इंस्पिरेशन नीडेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ, ऑल व्हाट इज नीडेड फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ इज ओनली राम, इफ देयर इज नो राम देयर इज नो सर्वाइवल, फॉर दैट पर्पस
2: आई माता की वो गंदे आम की खाते हैं,
3: भूमि एक्चुअली बिलोंग्स टू हिंदूज, इट्स ऑल हिंदू ओनली, वी आर ऑल हिंदू एंड वी आर सपोर्टर ऑफ हिंदू।
4: आपको लगता है कि ये राम जन्मभूमि बनेगा?
3: डेफिनेटली 100%।
4: आप क्या काम करते हैं?
3: आई एम डूइंग माई बिजनेस, ऑयल बिजनेस।
4: आप जाने वाले हैं अयोध्या?
3: या
4: कौन सी तारीख को निकलेंगे?
3: Well, that depends on my booking.
4: यहाँ से कितने लोग जाएंगे?
3: Say, well, not less than 50,000.
5: The Babri Mosque at Ayodhya was built in 1528. About 50 years later...